0: सनराइज हिट्स,
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए। एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777।
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे। आज तक यही झूठ कहा था तुमसे। चलो अब सच बता देते हैं।

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777पर कॉल कीजिए
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: सनराइज हिट्स,
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूथ स्टेशन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर।
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: यूं ही सफर, यूं ही सफर ये कट जाएगा।
1: दिस इज ब्रेकफास्ट ऑन सनराइज हिट्स, द यूकेस स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स.

0: Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Back-to-back songs brought to you by Southall Travel. From India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: Sunrise Hits Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए. ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel, from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Back-to-back songs brought to you by Southall Travel. From India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by South All Travel, from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: सनराइज हिट्स.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 0208574777 पर कॉल कीजिए.
0: Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज सनराइज हिट्स The UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 020-8574-7777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: सनराइज हिट्स, सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स। सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
1: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स।